0: और मैंने बोला हूँ मोहित ने बोला, तो मोहित ने बोलाऊंगी
1: बेटा। रिटवीन दिस बेटा रिटवीन।